कब्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो।

संग रहे हैं। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो भर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सेख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।

not that they really care about even nominees sitting on the offense. चाहे अगर पालू स्वामी में रह गई हो पति तरह से चला घर के चाहे रह गई हो तो जितने भी मालिक आप जल्दी

aquí lo dicen y es exacto. En un proyecto en el centro de la terapia. Yo pura paya, todo lo que me da, yo Oscar, bien gaya, yo pura tatuana, mi cuerpo de Aperman, que se me está dando un paya, a que sale, pues, a que se dio, a que se dio, a que se dio, a que se dio, a que se dio, जिन्होंने पूरा गुरु पाया उन्होंने अपने पैर उठे जिन्होंने गाते सारे दुखों में दूर कर लिया है रतन प्रधान का नाम तुम्हारा जी है जिन सच्चा सारे पल जीवन जा रहा जी है तीन ओंकार आप का नाम जो पदार्थ जरा धीरे धीरे बड़ा हो गए थे आप

महाराज कहन लगे सतगुरु दे अकाल पुरख दियां बरकतां गुरु नानक दा दर है, तू बड़े हंकार दे नाल आया। भाई कहना जी ये अर्थ ठीक कीते असने। भाई तन्ना सिंह नूं कहन लगे तेरे भी कोई है याद कविता? कहना जी मैं भी पढ़ दिना ये चांद कवि है जेड़ा ये मेरी कविता दे अर्थ करे। वो कहन लगा पढ़ी कविता। भाई तन्ना सिंह ने कहना मीन मरे जल के परसे, कबू हो ना मरे पर पावक पाए, हाथी मरे मद के परसे, कबू ना मरे तिन ताप के आए। ते कहन लग्या तिया मरे पिया के परसे, कबू ना मरे प्रदेश सदाए, गूर में बात कही दजरा राज, विचार सका ना बिना चित लाए। ते चांद कवि नु कहन लगे क्यों, सतगुरु कहन लगे क्यों चांद जी, कोई पता लगे है साधे साधे बंदे ने, सीधे साधे बंदे ने। तन्ना सिंह ने कविता पढ़ी है। कहना जी कविता तो पढ़ी है उसने, पढ़ी सारी गलती है। महाराज कहते कि गलत है? कहते वेखो जे मीन मरे, कहना आपकी कविता च मीन मरे जलखे परसे, कबू ना मरे पर पावक पाए, मच्छी है जेडी अग विच कहना मरते ही नहीं गे, पानी विच सुटी है ते मर जाती है। ये कहना कवि तुहाडा हाथी है जेड़ा उस नु शराब प्याते जावे तो मर जांदा है। ये गलत है। ये फिर कहन लगे तिया मरे पिया के परसे, तन्ना कहंदा ये जेड़ी स्त्री है ओदा पति जे बाहर जांदा ते ओ ज्यों पैंदी है, जो घरे आ जांदा है ते मर जांदी है स्त्री। तिया मरे पिया के परसे, कबू ना मरे परदेस सदाए, दूर में बात कही दजराज, विचार सका ना बिना चित लाए। चांद कवि कहन लगिया जी ये सारिया गलां ना तन्ना दिया तन्ने दिया गलत हन। सतगुरु कहने वे तू अर्थ करके सुना तन्ना सिंह कविता जेड़ी ये ठीक है? कहना हां जी ठीक है। कहना सतगुरु कविता बनाने वाले जानते है बंदे कि इस कविता दे विच एक नन्ना अक्षर लगे और ना ना लगी है चाई, मीन मरे जल के परसे, कबू हो ना इथे दा बसराम है। ते कवि आ जेड़ा उल्टा पढ़ता है, इस करके कवि आ जेड़ा मेरी अर्थ आ जेड़ी कविता दे कर नहीं सकया। कहना जी गलती माफ हो गई, आया तो मैं बड़ा हंकार नाल सीगा। सतगुरु कवि सतगुरु ने 52 कवि कोले रखे हैं। आओ अपन ढाडी सिंह पासे कविता जेड़ी सुनिए, अगे बेनती कर लगे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ताकत ते खड़ोते है, हाथ विच नंगी तलवार, चेहरा महाराज का बड़ा जलाल दे विच है। सतगुरु कहन लगे है जदों दूसरी बार तीसरी बारी ताकत दे उते खड़ोते ना आके सतगुरु ते मसंद सी जेड़े भजे भजे मां गुजरी कोले गए। कहन लगे मां औरंगजेब तो दस सिख मुके नहीं पर अज गुरु ने मुका देने, वारी वारी ना ले जांदे है फड़ फड़ के तंबू विच चटकाई जांदे है ते पंथ मुक जूगा। लोकी दा कहने भज गए सारे डरदे हुए पर मां गुजरी जानदी सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह पगत ते खड़ोते हन। तीसरी बारी कहन लगी है जिस पंथ दे मैं सरजना कर लगे हां, उस पंथ वास्ते दो सिर है जेड़े बहुते नहीं, एक सिर होर भेटा करो। सतगुरु ने ओ नहीं आख्या मैनू पंज सिर चाहिए है, क्योंकि नाल सिखी दा इम्तिहान भी हो रहा सी। तीसरी बारी सतगुरु खड़ोते हन की आख रहे हैं संगतां नूं संबोधन करदे, सुनो ढाडी जत्था क्यों बयान करदा है।

जन्म गुरान दा पटना साहिब आनंदपुर डेरा सी पिता गुरान दे तेग बहादुर माता गुजरी जी अजीत ते जुझार दोवें जंग विच वार ते दोस्त सरहंद वाली नी बसा गल हिरदे बसा के रखिए।

0: स्मरण बख्शिश करन, प्रभु का सिमरन सबसे उच्चा उच्चा सिमरन है। साडे हिरदे च बस जाए, जिदे हिरदे च सिमरन बस जाए, वह भी उन्ना ही उच्चा हो जाता जिन्ना सिमरन उच्चा, जिन्ना नाम उच्चा, नाम जपन वाले का भी उन्ना ही उच्चा सत्कार है। गज के अनंत सर गुरु साहब जी के जाने तो बाद जाना, संगत जी पहला ना जाना, इको ही दुआ कल का बाकी रह गया। हाजरी भरनी समय सिर आके फिर कदे सबबा नाल मेले होंगे। अगे समागम होया सी कई विच सन, अज नहीं, कई नवे आ गए, विछड़ गए ने, कोई चार महीने तो, कोई छे तो, कोई साल पहला चलिया गया। हुण कदे समागम बनेगा, मेल होएगी, की पता साडे च किन्ने होना किन्ने नहीं। हम आदमी है एकदम ही मोहलत मोहत ना जाना, एकदम दे आदमी हाँ, आदमी दम आ रहा है, आदमी नहीं तो मिट्टी दी तेरी, मिट्टी दी तेरी, बस गज के नाच।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

भगत रविदास जी का शब्द है, हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पत्यार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै। जिन्हां दे किए विच साईं दे मिलन दी सिक है, ओ सदा दर्शना दी ही दात मंगदे, ओ एही अरदास करदे हन के हमारे एह कृपा कीजै, अल मकरंद चरण कमलन से मन फेर फेर रीजै, आन जला से काज न कछुए हर बूंद चात्रक को दीजै। एक निका जिहा चात्रक जो स्वांति बूंद लई मालक दे चरणा विच बेनती करदा है, आवाज आई के इस धरती से बड़िया पवित्र नदियां दरिया हन, आ समुंदर दा जल तेरे हाजिर है, एक बूंद लई इतना तरस रहे, इतना व्याकुल हो रहे, आ जितना मर्जी है समुंदर दा जल ले ले, पर लिखे जे चात्रक ने फिर फेर देता, आख्या आन जलास्यों काज ना कछुए। हे निरंकार ये जितना भी जल है ना धरती से ये मेरे किसे काम नहीं, जिन्हां दे जीए विच सिक है मालक दे मिलन दी, ते कोई उन्हां नूं कह देवे भाई राज भाग दुनिया दे सुख प्राप्त कर लै, दर्शना दा ख्याल छड़ दे, ओ फिर सिर फेर देवेगा, कह देवेगा राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमला रे। तो इसलिए भगत रविदास जी भी कहंदे ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये तेरा है तन मन तन, ये मेरे वाहिगुरु कृपा कर कोई तेरे दर्शना दी झलक इस हिरदे विच पै जाए, ते मेरा संसार ते आउना सफल हो जावे।

के बलिहार जा रहे हैं। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं ऐसे मनुख तनता दे योग हैं, जिन्हों के हिरदे विच भुख है साई दे दर्शना दी। भुखता संसार नू भी है, कोई पदार्था लई रो रहा है, कोई महल माड़िया लई रो रहा है, कोई धी पुत्र लई रो रहा है। जे ज्ञान की नजर नाल तकोगे तो हर मनुख किसी ना किसी दुख नाल रो रहा है, पर करोड़ों विचों कोई एक है जिससे अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होवे, वो अपने मालिक लई दर्शना लई बैराग कर दे। हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, क्योंकि जिन्हों के गिए विच वस गया वाहेगुरु। सिख आवसी उदे दर्शना दी ते फिर उदा दे सदा नेत्र सेजल रहंदे हन। हो रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो। इसे तरह भगत रविदास जी भी अरदास कर रहे हैं।

नींद लेत परम पलावा मिट गया प्रभ पीखत नेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया साध संग हर हर अमरेत बलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना तेतो बिरथारी मिलत संग सब भ्रम मिटे गत पई हमारी जा दिन पेटे साध मोहे वा दिन बलिहारी तन माने अपनो जियरा फिर हों वारी रहाउ एत सडाई मोहे ते इतनी दृढ़ तारी सगल रेन इह मन भया बिनसी अपतारी निंद किंद पर दुख नाए खिन मह जारी दया मया अर निकट पेख नाही दूरारी तन मन शीतल भये अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी बलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारो बाल मस्तक अपना भेत देओ गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाओ जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल मोह को दीजै दान प्रभ संतन पागराल मुक्त सियानप कछ नहीं नाही कछ काल परम पै राखो मोह ते काटो जम जाल बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख काल बलावल महला पंजवा कीता लोड़ है सो कर है तुझ बिन कछ नाही प्रताप तुम्हारा देख कै जमदूत छड़ जाहि तुमरी कृपा ते छूटी है बिन सै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ खोजत खोजत खोजिया ना मैं बिन कूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लाव हो तित तित लग है सियानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किस तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारिया अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाउ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु समान भगत जना का लूघरा ओड नगन ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेटत साध का नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका
लै माथे लाव रहाउ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाम मलोवा आप त्याग संत संग तुमाव सास सास नह विसरे अनकत है ना कामो सफल दर्शन गुर पीटी है मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागल नानका अपने प्रभ पाव बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर घर लै आया रहाउ शरण परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बिलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन मह ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ तज रचे जे आन सिउ सोरलिया के रहाउ सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ परपंच प्रभ सिउ रचो तज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीए कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने दास दास को दासरा नानक कर ले बलावल महला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अनयास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाउ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार है दीन दयाल कृपा निदे सास सास सुमार है करनहार जो कर रहया साई वड्याई गुरपूरै अपदेसिया सुख खसम रजाई चिंत अंदेसा गणत तज जन हुक्म पछाता नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता बलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंध कूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाउ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अभ्याई बस्त संग हर साधकै पूर्ण अस्थाई भै बिन से त्यों लोक के पाए।

तेरा आधार। कर्म कार समरथ प्रभ हर अगम अपार। बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन। जिस प्रभ बिसराना करना हार ना बूझे आप गने बिगाना। दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए। संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ। ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै। कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै। पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया। सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया। करन कारण समर्थ प्रभ तेरी सरनाई। हर दिन सरैन नानक जपै सद सद बल जाई। बलावल महला पंजवा जल ढोवो एह सीस कर। कर पग पखलावो बार जाऊं लख बेरिया। दर्श पेख जिवाव करो मनोरथ मने माहे। अपने प्रभ ते पाव देओ सुहनी साधके। बीजन तुलावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो। वारस मह शांत तृप्त हुए बिखै जलन बजावो। जब भगत करहे संत मंडली तिन मिल हर गावो। करो नमस्कार भगत जन धूर मुख लावो। ऊठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो। नानक की प्रभ बेनती हर सरन समावो। बलावल महला पंजवा यो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए। साध संगत कै संग वसै वड भागी पाए। सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी। प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई। अमृत नाम जल संचया गुर पई सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। काटी सिलक भ्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जान हो अवर कस सब प्रभ कै हाथ। सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बलावल महला पंजवा बंधन काटे आप प्रभ हुआ कृपाल। दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल। गुरपूरै कृपा करी काटिया दुख रोग। मन तन सीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै। साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै। हर हर हर हर जापी अंतर लिव लाई। के लिवक उत्तर है सुध हुए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई। महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत। नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत। गुरपूरा जिस पीटिया ता कै सुख प्रवेश। मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश रहाओ। सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार। मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव। जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव। निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद। नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई। नाथे भय परमा थित पाई आनंद भया। गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या। बिनसी मेरी पीर तन मन सब शीतल भया। पाया सुख बीर रहाओ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद। पी अमृत तृपता सिया
ताका अचरज स्वाद आप मुक्त संगी तरे कुल कटंब उदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुण हीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवां हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाव संता एक त्यामना दूसर को नाही एक से आगे बेनती रव्या सब थाए कथा परातन इं सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भव नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ तौ शरणागत महादेव।

झूठ समग्री मानवसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यों तू राख है त्यों रहा प्रभ अगम अपारी कर्म कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ बलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महा मोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं बसास तू महा उदमादा खरका पैखर तो छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड हर संग सहाई महामीत तिस त्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारी उपजियो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना बलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार मित चितवते नाही कछ पोच धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत घना।

खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अचल अचेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिया प्रभ संग रहा बरन आश्रम।

तो संतन कह है विरले जोगी सर, कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा, नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा। बलावल महला पंजवा, जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ प्रताप, करज उतारिया सतगुरु करिया हरियाप। खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट, पूर्ण भई समगरी

पृष्ठा आर चरण कमल मन तन बस्ती प्रभ अगमय अपार बस्त कमावत सब सुखी तिथियून न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करह सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवां हर हर हर आराधी है होइए आरोग राम चंद की लटका

की प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। सरल परे चरनारबिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलाव महल्ला।

पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाउ। जीयन का दाताई कह बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए भेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ। बलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जम जाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम। रहाउ जलन बुझी शीतल पए राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा का वड प्रताप। बलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पए काम। पौ नाठा प्रम मिट गया रव्या नित राम, साध जना कै संग बस सुख सहज विश्राम। साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम। रहाव प्रगट पए संसार मह फिरते पहनाम, नानक तिस शरणागति घट घट सब जान। बलावल महला पंजवा रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत, वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा।

श्री गावें खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे थारे सही तुद न गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन सिम चेतन आवन नानक क्या विचारी सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिन हो पाई कर कर वेखै गीता प्रणाम जब तस दी वड्याई जो तस पावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह श्याम पात साहेब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख शर्म पत जोड़ी ध्यान की करें बपूत संथा काल कुआरी काया जगत डंडा प्रतीत आई पंथी सरल जमाती मंदी तै जग जीत आदेश तस आदेश आदि निर्णानाथ जो जो एको वेश भुगत ज्ञान दय भंडारण काट काट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जा की रद सदरा साधु संजोग बजोग दुकार चलावे लेखे आवे पाग आदेश तस आदेश आदि नीला नाद नाथ जो जो एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो किस पास स्वीकार कर कर विखे सजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तथा आदेश वाद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख हो है लख हो वै लख वीस लख लख गिड़ा आखी है एक नाम जगदीश एतरा पद पवड़ियां चढ़िया हो या कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर च पैना जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जगते छुटे संसार जिस हथ जोर कर विखै सोए नानक उत्तम निजना कोए राज दीवार पौन पाणी अग्नि पाताल तैस विच धरती थप रखी धर्मशाल तैस विच जी जगत के रंग जन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सचा आप सचा दरबार तिथा सोन पंच परवान नजरी करम पावे निशान कच पगाई उथे पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड गयो धर्म ज्ञान खंड गा सो करम केते पवन पाणी बसंतर केते गान महेश केते वरमे घाट दड़िया रूप रंग सेवेश खेतियां करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते मंडल देश केते सदगुनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान अमन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेव केते नानक अंत नंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथे नाम रोध गुड़ आनंद जन्म खंड की बाणी रूप जिसे घाट दड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कह पिछे पछताए जिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध जिसे घड़िया सुरस दंग की सुध कर्म खंड की बाणी जोर जिथे और ना कोई होर जिथे जुद महाबल सूर जन्मै राम रहे भरपूर जिथे सीतो सीता मैं ममाए ताके रूप न कथनी जाए ना ओ मरहे न ठगे जाहि जिनके राम बसै मन माए जिथे भगत वसै गलो करहे आनंद सचै मन सोए सतखंड हरि निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तथा खंड मंडल पर भंड जे को कथा तंत नंत तथा लो लो आकार जब जो हुक्म तिवतकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा तीर जस न्यार हरण मत भी दसियार पौ फला गंधब ताऊ।

तथा खंड मंडल पर पांडव जी को कथा तंत्र अंत दिता लो लोहाकार जब जो हुक्म तेवा तिवकार वेख विकसा कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा तीर्थ सुनियार हरण मातवीर हथियार पाओ खला आगन तपताओ बांडा पाओ अमृत दत डाल घड़िया सब सच टकसाल जनको नदर करम तनकार नानको नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता मात दर्द महातव दिवस रात दई दया आखे लै सकल जगत चंग्याईया बरियाईया वच धर्म दूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर।

के रोज ही ध्यान दें कि राज करीम है कि कर्मन करीम है, कि सरबंग कली है कि सरबंग दली है, के सर्वत्र माने हैं कि सर्वत्र दाने हैं, कि सर्वत्र गौने हैं कि सर्वत्र भावने हैं, कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है, कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है, कि सर्वत्र जाहो के सर्वत्र भाव, कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र काल है कि सर्वत्र बाल है, कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता, कि सर्वत्र फेखी के सर्वत्र फेखी के सर्वत्र गाजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भोख है, के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र माने सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है, के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग गलीम है के परमंग भीम है, के अकलो लाम है के साहब कलाम है, के उसनो बजूंगा तमाम सजूंगा है, हमेशा सलाम है सली खसम धाम है, गरीब सकाशता है गरीब बरासता है, बलंदर मकान है जमीनों जमान है, तमीजल तमाम है रजूअल निधान है, हरी फुल से अजीम है रजाग जगीना, एकल तरंग है बेदा पांग है, अजीव जम नवाज है गनीमन खराज है, निरुक्त स्वरूप त्रमुक्त भूत है, पर भोगत प्रवाह है सुजुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है, समस्त उपराज है सदा सर्वराज है, समस्त सलाम है सदैव काम है, निर्वाद स्वरूप है गाध अनूप है, उवंग आद रूप है नाद स्वरूप है, नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, त्रिवर्गं त्रिवादे गंजे गादे शुभंग सर्वभाग्य सुसर्वान रागे, त्रिपुक्त स्वरूप है सज है सूद है, कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है, निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है, निरोक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है, अनोक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है।

नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे रंगं स्वरूपे अपंगं भवभूते परमात्म परमात्मे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध भूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाता न माता न जाता न पाता निर्साक श्री का मितम ही गाय सदैवं प्रवाह जय जाय भगवती शंभ तव प्रसाद कि जार जूर है कि हाजर हजूर है कलाम है कि सब दिमाग है कि उसमें चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहम है कि राज करे हम दें करीमल कमाल है कि उसमें जमाल है गनीमल फिराज है गरीबल निवाज है हरिफल सिकान है राज सुलभ कान है कलांक प्रणास है समाज तुल निवास है अगंजल गनीम है रजाय करीम है समाज तुल जवा है कि साहब गिराए कि नरकंग प्रणास है बैस तुल निवास है कि सरबल गवन है मे सुंदर वन है समा मल तमीज है समातल जीज है परंग परमीश है समातल दीस है देसल लेख है मेसल देख है जमीनो जमा है मेकल माँ है करीमल कमाल है क्यों सन जमाल है गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरिफल सिकान है रासल पकान है कलंक प्रणास है समातल निवास है अगंजल गनीम है रजाय करीम है।

सुंदरवान है। तमामल तमीजा समाज तला जी जय परम परमीशा समाज तला दी जय आदेशल रेखा मेसल पेखा जमीन जमा है मी कलो माए क्रीमल कमाल है गजरो जमाल है गचलंग प्रकाश है किमित सुहास है कि आज में स्वरूप है किमित भूत है किमित तो बसा है कि आत्म प्रभा है गचलंग नांग है किमित भंग है मध पार शांत तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मदाम हर भर गांजु हर नर पर भांजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खांडु भर नर मंड अन पवनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मदाम अंश जंग आसन पंग उपमा पारगा मिलदार जल थल मांडव देश विश पांडव जल थल महांतो देश विश बेअंत अन पवन

कारण है सर्ववारण है धृत के धरण है जग के कारण है मन मान्या है यही जग जान्या है सर्वं पर है सर्वंकार है सर्वपास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड से है खलखंड से है परते पर है करुणा कर है जलप अजप जप है तप तप है करता करता है मृत अमृत है अमृत अमृत है करुणा करता है करता करता तरणिंद्रत है अमृतेश्वर परमेश्वर है अकृता कृता तरणिंद्रत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृता अमृत अमृत है अजब कृता अमृत अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हरता है

मानवेंद्र के जंदर नरात भोज अंतर लोक को राज करेंगे, कोट स्नान करो दिकदान अनेक सोम बरसात भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सजी पद अंत बसेजम पाद भरेंगे, जे नार सरी पद के बरसाए बाग दे नार फिर न दे करेंगे। कहाँ पायो जो दो रोचन मूद का बैठे भगत ध्यान लगायो, नहात लिए साधु अंदर लोग पर लोग आयो। बास के वक्रांत बैठके ऐसे ही ऐसे सब रुदाओ, साज कहूँ सुन ले सब जन प्रेम की जन प्र पायो। काहूँ ले पान कोई चर सर काहूँ ले लिंग करे लटकायो, काहूँ ले फिर बाची दिशा में काहू पिछा को शीस नभायो। को बतान को पूजत है पास को मृदान को पूजन तायो, कूर करया और जो सभी जागो सरी भगवान को।

दीन बंद दृष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश का हंता। काल पाई ब्रह्मा बपधरा, काल पाई सब जीव अवतरा, काल पाई कर विषण पर काशा, सकल काल का किया तमाशा।

जे कोई नंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई नंद

0: केवबोधी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

कोलू त्रिका चकी चक थल वरुल बहुत अनंत लाटू मधानिया अनुगा पंखी पौधे लैंड सूह चाड़ पाइए जंत नानक पौद्या गंत नंत बंदर बन पाए सोए पै कितन चै सब कोई नच नच हसै।

नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। महला पहला नाय मने पत बुझै साल आई तसूत दरगह नृपाई है।

पौड़ी जिथे सुपाई सो साहब सदा संभाली है, जितनी का पे अपना सा घर बुरी क्यों घाली है, मंदा मुना किसे दिल में नजर निहाली है, जो साहब नाल हारी है ते वेहा पासा ढाली है।

प्रभु को सिमराए से परोपकारी, प्रभु को सिमराए तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमराए से मुख सुहावे, प्रभु को सिमराए तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमराए तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमराए तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमराए तिन

नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन का भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की

जप ते आगावै जे मार्ग हो जाता केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मनस दा धियाई नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तै पार पराही अनक बिगन जाए आए संघार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जबत पावे विश्राम हौ मैला मल कबो न तोवे हर का नाम कोट पाप होवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है।

कहते नानक हर हर अमृत बरखै भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बदेक हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जबत कौ पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जबत कछ नाहे बेयोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन कौ आ प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर ना जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग के ते तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत दिवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग बड भागी पाई है संत की सेवा नाम से आई है नाम तोल कछ अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेठे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमृत वखियान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसै बिसारै मुगदिया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साठ छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो असर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंध कु मैं पद विकराल नानक काढ लेहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहे कछ करै छपाया।

आवत जावत जन्म मर जिसके अंतर बस निरंकार तिसकी सीख तर संसार जो तुम पहने तिर प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिनस जाए हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे ते सागर कौ रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन योग जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोभावै जिह प्रसाद सुख से सुई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ते आए।

पुण्य बहुदान मन अष्टहर करत इसका ध्यान जिह प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर उसका अनूप। जिह प्रसाद तेरी नीति जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहै। जिह प्रसाद सुनै करन नाद जिह प्रसाद पेखै बिस्माद। जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै। जिह प्रसाद परमगत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी मया आपो कछु ना किन्हू लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभनेरा साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रमहे समानी। साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेण साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग ना बींगा पैर। साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग ना ही हौ ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनयाई। साध कै संग न कबहूं तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी ऊचै साधु कै संग मैल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै जिस संते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुरदेवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल। साध कै संग कलुख तहर है साध कै संग नरक प्रहर है। साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला।
ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪੁਰ ਨਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜਕੜ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ।

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचे ऊंची, साध की शोभा मूचे मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नारक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला, जैसे महल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रव आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, या तमरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी

फला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै तरसदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहेता। ब्रह्म ज्ञानी क्या होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल।

कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स। पारत्रे रूप ना पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सबते जाने अब सो मंदा। गुर प्रसाद विखिया पर हरै, मन की बासना मनते तरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न।

केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब उपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरै नाम जपावै, नानक हो बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम या तुम मैं सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै।

नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, सत्संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जूत कत ना पाइय धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नगरी आया, दास बसंतन पाए तिन पाया। सदा निविट निविट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास

तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुगत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावन जोग, प्रभावै सोई फुन होग। पसर्यो आप हुए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रवृति, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते। कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है। कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे। कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेदे आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र। कई कोट किए रत्न समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच। सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजोनी फिरै। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे। कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मै चिंत। जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संतिन लवलागी। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ विनाश। कई कोट मांग ऐसा संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रमाहे समात। ताका अंत ना जाना कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेटे, सदा निहारा एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवै,
अमर पय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन कौ सास सास समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार।

अंतरजामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानख ते क्या होए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिख्या मै रचै जे जानत अपने आप बचै भरमे पूला दिद सावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जाना मिले खिर मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवै ते सतकाल दह दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ताका लेखा ना गणै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ।

कि मैं बस कबू सोग हर खरखा कबू सोग हर खरंग हस है कबू नंद चंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेटा ब्रह्म विचार नानक्या मिलावन हार कबू नृत करे बहुपात कबू सोए रह दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा।

कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मोन धारी लावे ध्यान, कभू तब तीर्थ स्नान, कभू सिख साधक मो ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे इतवै नचावे, ज्योत पावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जन मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत।

नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै, धनवंता हुए कर गरबावै, तृण समान कर संग न जावै, बहु लश्कर मानखी ऊपर करे आस, पल पीतर ताका हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, फिर में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह प्रमान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै, आप कहो जो पला कहावै, तसै पलाई निपट न आवै, सर्व की रेण जा का मन होए, कहो नानक पाकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही पीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज, सुपन मनोरथ बिरथे सबका जय, नाम रंग

एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक बिरथी सब जानो, देवन कहो एक है भगवान, जिसके दिया रह अगाए, बहुना तृष्णा लग आए। मारे राखै एको आप, मानो कह किस नाही हाथ, तिसका हुक्म भू सुखोए, तिसका नाम रा कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, उसका सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग।

पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसै ना लागै दुख जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक किसे डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई असूल न कि जन्मै न किस मरै अपन चलता आप ही करै आवन जावन दृष्टि अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच था प्यो थाप अविनाशी नाही किस खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगले उदारण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का सबज पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करै बड़भागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहि सुभाए होवै सो होए करणै हर पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा साव तैसा दृष्टाना जिससे उपजे तुस्महे समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आप कौ आप दीनो मानो नानक प्रभ।

जिस हो वै सो परसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानव की तू प्रीत आग, तिससे परे नाही किस कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सो जाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बसंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कह मन एहो अनुराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर। आनंद रूप मंगल सब जा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जन

नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कर रंग नाना बिदकीनो बिस्तार प्रभु नासी एक ओंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसै बजाए तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुधाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दै प्रवेश सत निरत बूझै जे कोए नाम जपत तां की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करना हार अवरना बुझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जो पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै भजन पदार्थ लहे ओए दाते दुख कट नहार जा कै संग

अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रुद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर दहो नाम हर वथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल।

नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास चित कर जाए बस अबनासी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सो का।

अनक्यो पावना छूट नहारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंछत नानक फल पाए संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बंता इनते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कमन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंफ चूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कह तो रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाओ सहसवाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उत्तर समैल बिन सजाए हूं मैं बिख फैल होहे अचिंत बसे सुख नाल सास ब्रासार नाम समाल छाड़ सियानप सगली मना सा संग पावे सजतना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पे एक आराध प्राश्त गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता।

तो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै। गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आंत जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावाओ, आप जपो अवरै नाम जपावाओ। भगत पाए करिया संसार, बिन भगती तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआओ। नेत्रो पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण तोए। भक्त जना कै मंथन रंग, बिरला को पावै संग। एक बस दीजै कर मया, गुरप्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं ना जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वचन सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आज पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुणी आर नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। पली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया नानका। आपे ही फिर जाप अष्टपदी, जब आकार हो कछ ना दृटे ता, पापुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हर शोक सह व्यापत। जब अपने आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्ती जा, नान करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मोत कौ किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नर्क सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए, तब शिव सकत कहो कित खाए। जब आप है आप अपनी जोत तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलत आप कर नहार, नानक ठाकर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब आप गत्या गोचर प्रवेका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही चर जा, नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय शर सिदर लगत।

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद तेब कहां कूचीन। जब अपने आप पुरत हारै, तो सगन अब सगन कहां विचार है। जह अपन ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए तेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी का जानो आप। जय अशाल आशे दा भेद समाया, ऊहा किसै व्यापत माया। आप सो पया देस, तेह गुण का नाही प्रवेश। जय का एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप प्यारा, तै कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंचे उच्चा, नानक आप सो आप पहुंचा। जय

उनकी शोभा उहु बनी। आपे कौतक करे अंध चोज, आपे रस भोग निर्जोग। जिस पावे तिस अपन नाय लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार असह अगंत अतुल, ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले। सलोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार। नानके को पसरिया, दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार, आप एक आप विस्तार। जात पावे ता सृष्टि उपाए, अपने पाने ले समाए। तुम ते पिन नहीं किस होए, अपन सूत सब जगत पर होए। जां को प्रभु जीवा बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगर श्रेष्ठ का जेता। जी जंतर सब ताके हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख तिस कोय ना मार, सो मुआ जिस मनो बिसार। तिस सजवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ।

दयालु सब उपर होवत कृपालु अपने कर्तव्य जानै आप अंतर जामी रहो व्याप पुरख पालै जियन बहु पांत जो जो रचियो सोथै ते आत जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक इक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बनयाई हुक्म बूझ परम पद पाई इसते ही उपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर अंधन पूजै गुर के पैर एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आप है मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचनो हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ आठ पहरो प्रपेखो नेरा मिटा ज्ञान बिनसा अंधेरा सुन उपदेश हृदय।

गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत में देख शशि अरसूर नक्षत्र में एक, वाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कब हूँ डोले, सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइये गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाति ज्योत तार रहे स्वामी ओत पोत, गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तन में एहो विश्वास। संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एक ओंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व पूतिया वरतारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सबके मद अलिप्तो रह, जो कुछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इससे होए सो नाही बुरा, और कहो किने कष्ट करा। आप भला करतूत अपनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोते अपन संग्राच। ताकि गत मित कहीं ना जाए, दूसर होए ता सोजी पाए। जिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लहे प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का यह सुभाव, जन कै संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन कहो।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेठ सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पंच परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित भव नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफल का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे शरण योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रव्याम मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन सुना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उसत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै अमर जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदृष्टि एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्री।

0: निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी।
1: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह स्वा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

एक सच नाम बाजो हो सगल विषय सार सो प्रभ जानिया सब संग गुर प्रसादी बुझिया एक हर कर रंग रहा सारा।

0: एक तेक आधार एको एक का मन जोड़े नानक जतिया मिल साध संगत हर दिन अवर न हो रे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बोलै

जन्म हम का लिखत होवे सो कहो तल गुर सेविया अहनिष्ट सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए कान हर बूंद बसोरो मावल कुसम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै श्री हर कृष्ण त्याई जिस दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए तेग बहादुर धर्म तुझ हरता तो

0: गुरुवार राजी महाराज भी हुई। कटनामा बढ़िया ने परख करने वाले ने बड़िया परखा कीतिया। राजा जय सिंह के महलों में जाके भी परख होंदी रही। कभी राणी नूं पटरानिया वाले कपड़े पवा के पहचान करन दी गल आ गई। आखिया महाराज दसो राणी केड़ी है। ते महाराज ने राणी दे सिर ते छड़ी रख के एक गल कही सी। कहन लगे पूर्वले कर्मा करके राणी का जन्म मिलिया ही। ते वेखी रब दे प्यारियां दी परख करदिया करदिया किते राणी तो गोली ना बन जाए। ये बचन सतगुरु गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने किया। दुखिया का दर्द वंडाउंदे होए सात संगत राजा जय सिंह के बंगले तो जिथे अज बंगला साहब गुरु घर बनिया होया है इतो जमुना किनारे चले गए। ते जमुना के किनारे जाके सतगुरु महाराज ने जिथे अज बाला साहब गुरु गुरुद्वारा है बिल्कुल इसके नेड़े तंबू लवा दिता। अखीर समा आ गया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या समान की तैयारी करो। गुरियाई का समान लिया गया। हाथ रख के केवल ते केवल आख्या सी साढ़े तो बाद गुरु नानक पातशाह की जोत के मालक जड़े ने ना वो कौन बन गए। बाबा बकारे हुण बाबा शब्द गुरु वास्ते भाई गुरदास तो ही वरत्या जाना शुरू हो गया सी। एक बाबा अकाल रूप आप बाणी दे अंदर पढ़ते हैं। बाबा अखर गुरु वास्ते भी वरत्या जान लग पिया सी पर साडे पंजाब दे अंदर बाबा दादे नू कहा जाता है। ते बाबा जिहड़ा ना दादे नू कहा जाता है। ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी दे भरा ने गुरु महाराज जी दे चाचा जी ने ते गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे दादा जी ने इसे वास्ते इशारा किया सी बाबा। पर धीर मल वर्गिया ने चतुराई नाल आखिया असी बाबे आदि हां। क्यों? क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी नूं यह बचन किया सी बाबा श्री चंद जी ने बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का। पर इथे विद्वानां ने बड़ी सुंदर गल कही है। कहन लगे बाबा जिउंदा है या दुनिया दे विचों चला गया है। बाबा गुरदित्ता जी जिहड़े ने साध संगत दुनिया दे अंदर नहीं ते हुण बाबा कौन है? धीरमल नहीं धीरमल चाचा है। बाबा कौन है? बाबे हन गुरु तेग बहादुर जी महाराज। परख विच पा दिता सिख जगत नूं पर साध संगत उस वेले बाई मंजियां लगियां होईयां सी। बाईयां दे विचों बाबा मखन शाह ने पर कर ली। ध्यान देवे उस वेरे तां जदों मखन शाह ने पन्नो फेरिया ते आख्या गुर लादो रे उस वेरे सारा सिख जगत भाई मखन शाह दे बचना ते विश्वास करदा है। पर अज किन्नियां मंजियां लगिया होईयां ने ढंडोरा पिटिया जा रहा है। हर पास्यो गुरु वाले बनो गुरु नू पहचानो पर सात संगत अज असी शब्द गुरु नालों टुट के देहधारियां दे नाल जुड़े हुए हैं। मैं बेनती करांगा गुरु हरकृष्ण जी महाराज का गुरु तेग बहादुर जी महाराज का पुरब मनांदिया होया घट्टो घट ये गल असी ध्यान दे अंदर रख लईए। मक्खन शाह सिदके सिख ने आवाज मारी आखिया बाहियां दे विचों नहीं बाइया तो बाहर भी कोई गुरु बैठा होया है। ते सिखा ने जदो आवाज सुनी सात संगत जिन्ने ड्रामा करन वाले भेखे सन उन्हां सारिया नूं छड के पूरे गुरु की शरण विच आ गए। आओ अज साडा मनाया होया गुरपुरब सकारथा हो जाएगा। इन्हां बचना नूं अमरी जामा पहना दिए। आग्या भई अकाल की तभी तलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। उथे ए नहीं आख्या कि गुरु ग्रंथ साहब जी कुछ सिखां दे गुरु हन। नहीं आख्या गुरु ग्रंथ साहब सारे सिखां दे गुरु हन। ते जिहड़ा सिख अखवांदा ओ मन अंदर झात मार के किसी दूजे की पूजा ना करे बल्कि गुरु की पूजा विच लग जावे गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जुड़ जावे साडा लोक नाल परलोक चौर जावेगा। इन्ने को बचन आप जी दे नाल सांझे करदा होया विचारां नूं संकोचदा हां जी। आओ अखीर विच शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां दोहरा लईए जी।
1: एक टेक आधार एको एक का मन जोरा नान

लोचन में दृष्ट दारस रस गंध संध श्रवण शब्द सुरत गंध रस पाए हैं। भाई साहब कहते उन्होंने अखां दे विचली जिहड़ी दृष्टि नजर है, नजर ने दर्शन और आखिरी जिहड़ी कंधी की संधि है उन्हों और कन्ना ने शब्द सुरत सुनने वाली जिहड़ी गंधी दी रास है उस संधि नूं पाया। रसना में रस गंध शब्द सुरत मिल नास वास रस सुरत शब्द लिखाए हैं। फिर भाई साहब कहते जीव दे विच स्वाद दी गंध खिच गंध कहने खिच और सुरत दे विच शब्द दा मेल नासा विच वाशना दा रस ते सुरत ने कन्ना विच शब्द आवाज दी जिहड़ी लखता उसनों प्राप्त किया है। और ओम रसना श्रवण दृढ़ नासा कोट खंड ब्रह्मंड पिंड प्राण में जिताए हैं। भाई साहब कहते हैं जिन्हों का रोम रोम नाल स्पर्श जीव नाल स्वाद कन्नों नाल शब्द अखां नाल दर्शन नासा नाल वाशना का ज्ञान प्राप्त होता है और जो करोड़ा खंडा ब्रह्मंडा के शरीर विच परमेश्वर व्यापक है उसने प्राणा विच ज्ञान लिया कि ये जितनी भी प्राण कला चलती है ये सारे इंद्रिय अपनों अपना कर्म करते हैं कि उस मालक की शक्ति नाल ही कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म आप अपन ही आप साज अपन रचो है ना आप ही विचारक है। भाई साहब कहते हैं कि वह पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा ने आपे अपना जड़ा शरीर अपने आप तो साजिया बनाया फिर आपे ही विचार करके अपना जड़ा नाम है वो नानक रचा जिहदा अर्थ है ना अनक जिस अनेक गुणा ने दवैत नहीं हमेशा एकता विच है उहदा नाम है नानक। आदि गुर दूजिया गोविंद नाम कह कहायो गुरु रचना आकार ओंकार कै। भाई साहब कहते पहले सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने अपना दूजा नाम गोविंद करके कहाया सतगुरु जी के आकार की जिहड़ी रचना है वो ओंकार के ओंकार करके हुई है। आकार में शरीर की जिहड़ी रचना ओंकार के करके ही हुई है क्यों सारी महिमा शब्द की है। गुरमुख नाद वेद गुरमुख पावै भेद गुरमुख लीला तारी अनक अवतारक है। भाई साहब कहते हैं सतगुरु जी आप ही नाद है तो वेद है सतगुरु ही इसका जरा भेद है उन्होंने पाते हैं। सतगुरु जी लीला तारी हो के अनेक अवतार धार रहे हैं आपे अनेक प्रकार की लीला धारण करते हैं आपे अनेक प्रकार के अवतार धारते गुरु गोविंद और गोविंद गुर एकमेक ओतपो सूत्रगत अंबर उचारक है। भाई साहब भाई गुरदास साहब कहते हैं गुरु ही गोविंद है तो गोविंद ही गुरु है। भाई साहब कहते दोनों आपो विच एकमेक हो रहे हैं किमें ये ताना पेटे का सूत्र एक मुख होने की जड़ी गति या हालत उन्होंने प्राप्त करना उदा नाम कपड़ा कहा जाता। इस वास्ते आदि गुरु के नाल जो गोविंद नाम कहा इस तो भाव श्री गुरु गोबिंद सिंह जी है भावें उस वेले सतगुरु जी ने अवतार नहीं सितारिया पर भाई साहब जी ने तिब दृष्टि देख के ये बचन कहा। इस वास्ते जिमें हम सतगुरु सच्चे पातशाह ने आप कृपा की पुछण से अरदास कर छे महलां तक दर्श निहारी अगम गुचर सतगुरु बोले मुफ्ते सुन संसारी कलयुग पीढ़ी सोढ़ियाँ निश्चल नीव असार खलारी जुग जुग सतगुर तरे उतारी।
ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, 6 ਸਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਸੋਢੀ ਵਾਂਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇਗੀ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ, ਯੋਗ ਮੈਨੇ ਦੋ, ਯੋਗ ਮੈਨੇ ਦੋ, ਦੋ ਅਤੇ ਦੋ 4 ਅਵਤਾਰ ਹੋਰ ਧਾਰਨਗੇ, 6 ਅਤੇ 4 ਹੋ ਗਿਆ 10, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। 10ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੜਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹੋਤ ਬਿਰਖ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਲਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਹੋਇਆ। ਅਥਵਾ ਨਿਰ ਆਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਸਹਿ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਫਲ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬਿਆਨਤ ਆ। ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ, ਐਸਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪੁਰਬ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਧਾਰ ਹੈ।